0: एक घड़ी बच जाए तो 100 घड़ी बचा हो जाता। सियाने बंदे कहिंदे है, कहावत है भी एक घड़ी का बचिया बंदा 100 घड़ी बच जाता। भी आ एक घड़ी जे तुसी बच गए लुक छिप के तो फिर जिन्ना चिर मर्जी इत्थे बैठे रहो, क्योंकि मोमन खां जदों वापस जाएगा तो तुसी इत्थे आ जाना, वो बार बार थोड़ी लाहौर तो आवणगे तुहाडे ते चढ़ के। इस करके बाबा जी तुसी आ एक घड़ी अपना आप बचा कर लो, मुड़ के 100 घड़ियां आप ही बचा हो जाएगा।
1: काहे अकारथ जान गवाए।
0: बाबा तारा सिंह जी क्यों बिना कारण तो अकारथ अपनी जान गवाउंदे हो, अपनी जान बचाओ, ए जगह छड़ के चले जाओ।
1: तौ सिंह जी उस किया समोध।
0: अगो बाबा तारा सिंह जी बड़े योधे सूरमे सन, ओ तां मुल लैंदे सी लड़ाई, ओ तां उड़ीकदे सी भी कदों मलेच चढ़ के आवण ते उहनां नाल जंग मचाईए। बाबा

अखो सतनाम श्री, फिर अखो जी सतनाम श्री। बहुत ही प्यार दे नाल सत्कार योग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाले वाले तिन्हां दे पासों आप जी सिख इतिहास दे वडमुल्ले पन्ने सरवण कर रहे सो। आओ कुछ क मिनटां वास्ते आपो अपनी सुरती विरती कागर करो, आप गुरमति विचारां नाल सांझ बनाईए। भावें कि बहुत सारिया संगतां नगर कीर्तन विच सेवा करके नाल संगती रूप दे शब्द गायन करके तुसी थके हुए हो, पर फिर भी जिहड़ी जगह ते आपां बैठे इत्थे थकावटां उतरदियां ने और तुहाडा बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी सारी संगत दी, तुसी बड़ी कृपा कीती। आपां परसों बेनती कीती सी कि पीजे बर्गर नगर कीर्तन ते खा के घर जा के सौ ना जायो, ता तुसी पीजे बर्गर भी खाधे सारे ने हाँ वधिया गल, सब दा धन्नवाद। आओ हुण आपां गुरु दे शब्द विचार नाल जुड़ीए। दो तरीके हन सुख दे, एक सेवा ते दूजा सिमरन। गुरसेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगै आए, जम्मण मरना मिट गया काले का किश ना वसाए। जां फिर है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। दो तरीके हन दुख मिटाउण दे, पर दोवां विच इक शर्त है। जिस सेवा और सिमरन उत्ते गुरु दा मन मन जाए वो सेवा प्रवान है। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। कई बार आपां समझदे कि मैं सेवा कीती है मैं सेवा कर रहा, पर आपां गुरु नूं पुछ लईए महाराज की मेरी सेवा प्रवान है। मैं रोज नाम जप लैना जी, जपजी साहिब पढ़ लैना, महाराज तो पुछिए महाराज की प्रवान है, तां फिर सतगुरु जी जवाब देणगे। कहिंदे भाई जदों सेवा करके तेरा मन नीमा होण लग जाए, तेरे मन विच निम्रता आउण लग जाए, तेरे अंदर दा क्रोध जिहड़ा वह तेरे वस विच आउण लग जाए, फिर समझ तेरी सेवा प्रवान हो रही है। जे मन दीआं आदतां वस विच नहीं आ रही, तेनू सेवा करन तो बाद भी क्रोध आ रहा है, सेवा करन तो बाद भी ईरखा द्वेष दूजे नाल वैर विरोध पैदा हो रहा है, फिर वो सेवा तेरी प्रवान नहीं हो रही। क्योंकि सेवा और सिमरन नाल पहला सुरती दे रोग मिटदे, फिर शरीर दे रोग मिटदे। एक बार आखो वाहिगुरु वाहिगुरु। सेवा ते सिमरन नाल की हुंदा है, पहला सुरती दे रोग मिटदे। सुरती दे रोग की हन, जिहड़े पिछले कई जन्मां तो नाल चल रहे ने, जिन्हों हजूर कहिंदे जन्म जन्म की इस मन को मल लग गई। कहिंदे कई जन्मां तो मैल लगी हुई है भाई, पहला सुरती दे मैल उतर जाए, सुरती दे रोग दूर हो जाए, फिर तेरे शरीर दे रोग भी हट जाने, तेरी सेवा प्रवान हो जानी। तो जदों हजूर ने सुरती दे रोगां का जिक्र किया उदों एक पंक्ति तुहानू याद है सुखमणी साहब जदों पढ़ोंगे जां सुणोंगे, उहदे विच हजूर ने रोगां का जिक्र किया। साहब कहिंदे पहला रोग है किसे नाल वैर करना, पहला रोग किसे नाल वैर करना। जदों तेरी सेवा ते सिमरन प्रवान हो जाए फिर रब तेनू निरवैर करन लग पैंदा, क्योंकि उहदी डेफिनेशन है उहदी वड्याई है कि रब निरवैर है। आपां रोज पढ़दे ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर वैर, उहदा किसे नाल वैर नहीं। दुनिया विच कोई किन्ने भी पापी लोक होण, विकारी होण, मूर्ख होण, हरामखोर होण, निंदक होण, कातल होण, रब किसे नाल वैर नहीं करदा, उहनां नूं रोजी देई जांदा। ईवन इत्थों तक
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵੈਰ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ, ਸੰਤੋ ਬਾਹਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੇ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗਨ ਰਥ ਸਰਵ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

जन्म कहते कई जन्म लंघे तेरे तेरे वैर ही नहीं मुके। तू दूजिया जूना च भी वैर करता रहा, इस देही च भी वैर करी जाना, कदे भरावान नाल, कदे गुआंढ़ियों नाल, कदे होर दुश्मन, वैर ही मन चो मुकदा नहीं। आहू जुगत बेहने कई जन्म। महाराज मुकणगे किवें? कहते सेवा ते सिमरन करके ना। कह गुरु नू नानक राख ले हो अपन कर करम, आखो नानक राख ले हो अपन कर। अच्छा एक तजर्बा करो, जिहदे नाल तुहाडा वैर है ना, भावें घरवाली नाल ही है, घरवाले नाल ही है, लोग बच्चे निके निके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों नू लैके अलग अलग बैठे ने, तुसी बहुत वड्डी सजा दे हकदार होवोंगे, क्योंकि उन्होंने माणिया जिंदा नो वह बच्चों बेचारियों एक दूजे तो दूर कर, सिर्फ अपनी ईगो करके, अपने हंकार करके। तो कोई भी वहर मिटाना चाहता है वह रोज़ गुरु अगे हथ जोड़ के आके कवे कि

श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध्या वै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

ग्रीवनवाज सतगुरु जी आप जी के हजूर अरदास है जी। दीवान दी समाप्ति उपरंत आप जी दे पावन स्वरूप दी टहल सेवा हुई है। ग्रीवनवाज सोहिला साहब जी दी बाणी दा पाठ कीता गया। बाणी पढ़दियां सेवा करदियां हजूरी विच विचरदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी मुआफी बख्शनी अगे तो सुमत बख्शिश करनी। ग्रीवनवाज सेवादार संगत हाजर है आप जी अपने सुंदर आसना उपर आराम फरमाओ संगत नु खुशियां बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गोरे सिक्खी सो थान पालिया ले धुरमुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हार।

देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे ग्रंथ मार बोलो सो निहालो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद

0: की रसना
1: नानक जन का दर्शन दसना
0: प्रभु को सिमरे से तरवंते
1: प्रभु को सिमरे से पतवंते
0: प्रभु को सिमरे से जन परवान
1: प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान
0: प्रभु को सिमरे से बेमोताजे
1: प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरे से

0: बल बल जैसा
1: सगल पुरख में पुर प्रदान
0: सा संग जाका मिटे अपमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो गणिये सब ते उच्चा
1: जाका मन होए सगल किरीना
0: हर हर नाम तिन काट काट चीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: देखे सगल सरिस साजना
1: सुख दुख जान सम दृष्टि।

0: चोर चूड़ संग मचे,
1: जो छेड़ना सो अस्थिर कर माने,
0: जो हो वंशो दूर पराने,
1: छोट जाए तिसका श्रम करे,
0: संग सहाय तिस पर हरे,
1: चंदन लेप तारे तोई,
0: गर्दन प्रीत पसम संग होए,
1: अंधकूप में पतत बिकराल,
0: नाने काड लो प्रभ दयाल,
1: करतूत पशु की मान जात,
0: लोक पचारा करे दिन रात,
1: महर पे खंतर मल माया।

0: सिमरन दिन रैन ब्रिथा बिहाई
1: मेघ बिन आजो खेती जाए
0: गोबेद भजन बिन ब्रिथे सब काम
1: जो कर पन के नरार्थ दाम
0: तन तन ते जन जय कट बस्यो हर नाव
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत वर कछ वर कमावत
1: माने प्रीख मुखों गंड लावत
0: जनन हार प्रभु परवीन।

0: तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने करना दे
1: जय प्रसाद पे के विस्माद
0: जय प्रसाद बोले है अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहज वसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद सुपूरण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मान जागो
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार

0: मन सदा जुड़े
1: जय प्रसाद तू पावे साचे
0: रे मन मेरे तू ता स्वराज
1: जय प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल बगास
1: प्रभु प्रसन्न बसे मन।

0: नानक साध प्रभु भले आई
1: साथ के संग न कबूतावे
0: साथ के संग सदा सुख पावे
1: साथ संग बस्त गो चला है
0: साधु के संग जास रहे
1: साथ के संग बसे था।

0: बेसरा
1: साध संग सर पर निस्तर
0: साध के संग लगे प्रमीठा
1: साधु के संग काट का डीठा
0: साध संग पे आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग।

0: जागते
1: ब्रह्म ज्ञानी अहबोत्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेत

0: ज्ञानी का कथया न जाए अदाख्य
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारे
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण

0: मंतनंतर सिमरन गोपाल
1: सबु परहोवत कृपाल
0: आपदृढ़ अबरा नाम जपावे
1: नानको वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भक्त का

0: मंगल गुण गाम।
1: काहू जगत किते न पाइये तरम,
0: नाने तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास।
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास रंजन पाए तिन पाया।

0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाई है,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई,
0: संत के दुखी की पूजे ना

0: कबन निडर कबन कत डरे
1: अपन चलता आप करने हारे
0: नानक ठाकर अगमा पार
1: अपना शिशु के अपने आसन
0: है जन्म मर को अपना सन
1: जब पूरन करता प्रसोए
0: तब जम की त्रास कहो के सोए
1: जब अपगेत गोचर प्रवेका

0: राष्ट्रपति
1: आप कथे आप सुनने हारे
0: आपे एक आदि
1: पावेता सृष्ट पाए
0: अपने भाने लय समाए
1: तुम ते पे नई कछो
0: अपन

0: जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।
1: सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वादाइयां।
0: राग रतन परवार परिया शब्द गावन।

0: कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा।
1: सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सगवाइया।
0: कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: सदा कुरबान कीता गुर बिटो, जिस दिया आए वड़ियाइया।
0: कहे नानक सुन हो संत, हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पंच तित कर।

0: जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया।
1: कहे नानकेहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
0: बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे बेचारिया।
1: एक परम पुले फिरे दिस एक नाम लाज सवारिया।
0: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना

0: मन तो वो शब्द लाग हो हर से रहो चित लाए।
1: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एस साहिब जाए।
0: जियो मैले बाहर हो निर्मल जियो ता मैले तिनी।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते।

सो कह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाई सतना

जियो पिंड सब तिसदा दे खाजे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नी सुधाइए जे जरवाड़ा पर।

जोड़ सतगुर अखो सतनाम श्री। फिर अखो जी सतनाम श्री। बहुत ही प्यार नाल अति सत्कार योग ज्ञानी ब्रतपाल सिंह जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पटियाले वाले तिन्हां दी मुबारक रसना तो आप जी गुरमत विचार इतिहासक विचार सरवण कर रहे सो अज एतवार के विशेष दिवाना विच आपां घर के कम्मां तो विले होके हाजरियां भर रहे हैं। ग्रिस्ती बंदे दे काम नहीं मुकदे पर जदों गुरु की मत गुरु की सोझी मिलती है फिर उन्हां कम्मां कारां विच्चों भी गुरसिख समां जरूर कढ़दा है। और साध संगत आपां एतवार नूं छुट्टी दा दिन मनदे हां और लोकी ये सोचते रहिंदे कि एतवार छुट्टी है आपां नींद पूरी करिए अज छुट्टी है आपां इंजॉय करना है घूमन फिरन जाना है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कहा छुट्टी का दिन है एतवार है अज अपनी भगती विच वाधा कर। आखो वाहिगुरु बाकी कम्मां दे दिनां विच तेरे कोल वक्त नहीं है कि तू भगती वध कर सके तू नितनेम वध कर सके। कम्मां वाले दिनां विच हो सकदा है तेरा पाठ रह गया हो गया। कम्मां वाले दिनां विच हो सकदा है तेरे कोल जपजी साहिब ना होया हो गया। अज छुट्टी वाला दिन है भगती विच वाधा कर। इसलिए कल्ला नींद पूरी करन उत्ते नहीं समां जोड़ना चाहीदा क्योंकि नींद नहीं कदे पूरी हो सकती। जदों आपां गुरु दे शब्द वल सेवा सिमरन वल जुड़न लग जाऊंगे तो फिर बहुती नींद की लोड़ नहीं रहिंदी थोड़े घंटियां विच ही नींदां पूरियां हो जांदियां ने। अदरवाइज नींद नहीं कदे पूरी हो सकती। तुसीं अपनी पूरी उम्र नूं कैलकुलेशन करके वेखो तो रोज दे छोटा बच्चा तो 16-16 घंटे सौंदा है पर जे तुसी आपां 9 घंटे भी मैक्सीमम नींद लाइए तो तुसी हैरान हो जाओगे 40 सालों विच जिंदगी दा एक तिहाई हिस्सा 10 साल सुत्तिआं लंघ है। 40 सालों विच 10-12 साल सुत्तिआं लंघ है 60 साल विचों 20 साल सुत्तिआं लंघ है नींद नहीं पूरी हुई। हजूर ने बाणी अंदर कहा एतवार है भाई भगती विच वाधा कर। अज पाठ एक जपजी साहब का वध कर ली हो सकता कम्मां दे दिनां विच ना होवे तेरे कोलों। इनू हजूर

0: सतगुर सतगुर बंदी छोड़ है। अज सतगुर जी का गुरतक दी गुरपुर नाल दी नाल तुहानू लख लख वधाइयां। पंथ दे महान विद्वान अति सन्मान योग ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी भमद्दी, जिन्हां नू सुन सुन के जिन्हां नू पढ़ पढ़ के सैकड़े नौजवान ढाडी बने ने, और ढाडी सिंघां दी ढाडी प्रथा दी शान ने अज पंथ विच वह दर्शन करने लई पहुँच गए ने। उन्हां दे जत्थे ने सेवा करनी। सैकटरी साहब तो अगला प्रोग्राम सरवण करो। शम्मां दा इक दीवान होर है, कल फिर दास की वापसी है। पंजाब की सारिया संगतां दा धन्नवाद। शामी फिर दर्शन देने। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतगुर ग्री नवाज सचे पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच सज रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी नाल गुरमत विचारां दी सांझ पा रहे सन। साडे सत्कार जो पंथ विच प्रसिद्धि हासिल कर चुके ज्ञानी भाई साहब जी सिंह जी लुधियाने वाले, ज्ञानी जी दा संगत वालों बहुत बहुत धन्नवाद। ज्ञानी साहब जी सिंह जी दा इस गुरमत प्रचार फेरी इस गुरु घर विच शाम दा दीवान लास्ट आखिरी दीवान होवेगा। शाम दे दीवान दा समा 7:30 तो 8:30 दा होवेगा। आप जरूर व जरूर हाजरियां भरनियां। मैं बेनती करदा हाँ गुरु घर दे मुख वजीर भाई रणजीत सिंह जी नू, जो आप जी नू ज्ञानी साहब जी सिंह जी लुधियाने वालियां नू सरोप पाओ दी बख्शिश करनगे। नाल ढाडी जथे नू बेनती है कि नाल आ जावे। प्रधान साहब बाबा जी सत श्री अकाल। ज्ञानी साहब जी जी का फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसे तरह संगतां दीआं असीसां ते गुरु साहिब दीआं खुशियां प्राप्त करदे रहन। संगत जी, कल 28वां नगर कीर्तन सतगुरु महाराज जी दी अपार कृपा सदका बहुत ही वधिया अते सुचजे तरीके दे नाल समें सिर संपूर्ण होया। सतगुर सच्चे पातशाह जी दा कोटन कोट धन्नवाद है। देश विदेश अते लागली सिटी तो आईयां होईयां सारियां ही संगतां दा प्रबंधक कमेटी वलों लख लख धन्नवाद। सरदार कुलविंदर सिंह जी नाल ते उहनां दे परिवार वलों हर साल दी तरह इस बार भी लंगरां दी सेवावां कीती गई। इस दे नाल बहुत सारे टेंटां विच प्रेरी विंड पार्क विच अनेकां प्रकार दे लंगर लाए गए। नगर कीर्तन दे रस्ते विच लंगरां दी सेवा कीती गई। गुरद्वारे साहिब दे बाहर टेंटां विच सेवावां कीतियां गईयां। असीं सारे ही सेवादार जिन्हां ने फलोटां दीआं सेवावां सजाउण दीआं गुरु घर दे सफाई दीआं जिस दे नाल नाल भी इस नगर कीर्तन विच मुख रखदे होए सेवावां कीतियां, जिन्हां ने भी उहनां सारियां ही संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। प्रबंधक कमेटी वल्लों लख लख धन्नवाद। सतगुरु जी दी अपार कृपा है, आप जी दीआं कीतियां सेवावां नूं महाराज आप ही भाग लाउण, आप जी नूं गुरमत दीआं दातां बख्शण, आप दी झोलियां भरन। संगत जी इत्थे ही एडे वड्डे कार्ज संगत दे सहयोग दे नाल ही संपूर्ण हो सकते हन। सानू कैलगरी संगत तो माण है जिन्हां ने मान धन दे नाल सेवावां कीतियां अणथक सेवावां कीतियां। सारियां ही संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां वलों इन्ना प्यार ते सत्कार प्राप्त होया। अज मीरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस है। आप सब संगतां नूं लख लख वधाईयां होवन। गुरु सवारी साध सिंह जी, हुण समां है ढाडी 12 दा पंथ दे प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी भाई त्रिलोचन सिंह जी भमद्दी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

हो पयण जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख अपारो ताका अंत न पाया आया तिनका सफल पया है एक मन जिनी त्याया ढाहे ढाहे उसारे आपे हुक्म सवारण हारो जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारो नानक रुना बाबा जानी जे रोवै लाए प्यारो बाले वे कारण बाबा रोई है रोवन सगल बेकारो रोवन

है। हाकारा आया जात सपाया रुन्ने रोवण हारे, पुत भाई पातीजे रोव है प्रीतम अत प्यारे, पैरो वह गुण सार समाले को मरै न मोया नाले, नानक

संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें काश संगी नहीं नानक साची जान। पतित उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तेह।

कौ नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए। जेह सिमरत गत पाई है तेह भजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना औ

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जेह बिखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे भाग। जेह माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तेह घट।

मान पैनासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तेह काम जेह बा गुण गोबिंद भजहो करन सुनहो हरन।

और न लेत उधार। ज्यों सुपना अर्पिखना ऐसे जग को जान, इनमें कश साचो नहीं नानक बिन भगवान। निसदिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को नारायण जेह चीत। जैसे जल

कह नानक बिन हर भजन परत ताहे जम भंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। कह नानक

परत ताहे जम फंद, सुख में बहु संगी पए, दुख में संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए, जन्म जन्म

गर्भ करत है देह को बिन सह छिन मैं मीत, जेह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान, एक

पयो जिसका सब सधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक

नंदन। प्रथम राग भैरो वै करही, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली, पुन्याकी गावह बंगली। पुन असलेखी की पई बारी, ए भैरों की पंचो नारी। पंचम हरख दिशाख सुनावह, बंगालम मद माधव गावह। ललत बिगल बिलावल गावही, अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक आलाप है, संग रागनी पंचो थाप है। गोंड करी अर

प्रबल चंड कौशक उबारा खोखट अपोरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठह तान कलोल गायन तार मिलाव ही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान ओ आहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र।

दान श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल।

अकाल पुरख वाहेगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के हजूर अरदास है जी। आप जी दे दर घर दे प्रीतवान भाई अजय

जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस पा

सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अर्शों कुरसों।

जप गोबिंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच बटवारे मन बच क्रम प्रभ एक त्याए सर्ब फला सोई जन पाए धार अनुग्रह अपना प्रभ कीना

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब है करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैर इनको आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जोबर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है। मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तुझ जू करी ओह रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंत।

कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप आपनी भूज उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रचा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठ वत उतपाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तव शरणी परे, तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रचा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट ट्रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह चुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा।

पयो जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंचे जिसका हुए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक।

अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरसों चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह।

श्री वाहेगुरु साहिब जी राग सूही महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर